और ये और ये और ये एक कहते हैं मुझको राजा, अरे बजा दे ए बजा दे प्यारे तू बाजा।